0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। उमंग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर विचार भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरेलकर जी ने। लिखते हैं,
2: बदलना है अगर कल को तो आज को बदलना सीखो, किस्मत की राह न देखो, खुद आगे बढ़ना सीखो।
1: बहुत सुंदर और प्रेरणादायी विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ श्रोताओ, परिवर्तन आज को बदलने से ही आता है, क्योंकि कल कभी नहीं आता।
2: जी
1: आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी का।
2: नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। स्वामी विवेकानंद जी पर केंद्रित कार्यक्रम उमंग सुना एवं पसंद आया। कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है।
2: आपने आगे लिखा है, कार्यक्रम इस तरह से प्रस्तुत किया गया जैसे स्वामी विवेकानंद जी साक्षात हमारी आंखों के सामने हैं एवं मन लगाकर हम इनका प्रवचन सुन रहे हैं। शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत

0: के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: और राजा जी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
0: गुजरात गांधी ग्राउंड से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
1: तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज की चर्चा में।
0: श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस दोस्त की जो हर समय हमारे साथ रहता है। जरा सोचिए, कौन है वो जो इस आधुनिक युग में हमेशा लगभग हम सबके साथ रहता है, कोई रहे न रहे और उसके बिना अब रहा ही नहीं जाता।
1: हाँ, विमलेश जी, मुझे लगता है आप बात कर रही हैं मोबाइल फोन की।
0: बिल्कुल सही कहा जी जी अब तो लोग क्या विद्यार्थी भी मोबाइल के बिना ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे मछली पानी के बिना।
1: जी, बहुत हद तक आपका कहना बिल्कुल ठीक है। विमलेश जी, सच्चाई तो ये है कि कुछ तो रात को भी मोबाइल देखते देखते सोते हैं और सुबह भी मोबाइल देखकर ही उठते हैं।
0: लेकिन अजीत जी, सच्चाई तो ये भी है कि अब मोबाइल के बिना काम भी नहीं चल सकता।
1: जी, वो तो है।
0: हम किसी न किसी प्रकार से उस पर आश्रित हैं।
1: जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से समझना होगा कि मोबाइल तो मात्र एक साधन है।
0: जी
1: महत्वपूर्ण ये है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। इसका सही उपयोग हमें आगे ले जाएगा और गलत उपयोग बिल्कुल पीछे।
0: जी
1: लेकिन प्रश्न है कि मोबाइल का सही उपयोग करें तो कैसे करें।
0: जी अजीत जी, चलिए मान लीजिए परीक्षा 1 महीने बाद है। विद्यार्थी मोबाइल उठाता है पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई के लिए गंभीर भी है। मोबाइल में परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन कक्षा चल रही है कि तभी एक नोटिफिकेशन आया, नई रील देखिए। अब बताइए जी जी क्या होगा।
1: फिर एक और रील या स्टोरी और आ जाएगी।
0: बिल्कुल, या सोशल मीडिया पर और कई संदेश आ जाएंगे, पता चला कि उसकी फोटो को बहुत से लाइक्स मिल गए हैं।
1: और एक मैसेज ये भी आ गया कि आपकी फोटो तो साहब बिल्कुल कमाल कर रही है, कुछ और फोटो डालिए। अब क्या होगा हम समझ सकते हैं।
0: देखते देखते 1 घंटा क्या कई घंटे गायब हो गए
1: और शायद पूरा दिन पानी में गया। तो अब सवाल ये है विमलेश जी कि क्या किया जाए।
0: देखिए, यही वो समय है जब पढ़ने वाले को संयम और दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। एक नियम बनाना होगा, पढ़ाई के समय सोशल मीडिया बंद।
1: और नोटिफिकेशन भी बंद।
0: बिल्कुल, नहीं तो हर 5 मिनट में मोबाइल बोलेगा,
1: क्या बोलेगा,
0: मुझे भी देख लो।
1: लेकिन सवाल ये है कि यदि मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ तो विमलेश जी इंटरनेट तो ऑन है, ऐसे में सोशल मीडिया भी तो चलता रहेगा।
0: नहीं अजीत जी, आप मोबाइल छोड़े बिना इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं, इसका भी उपाय है।
1: वो कैसे?
0: हर मोबाइल की सेटिंग में DND या डू नॉट डिस्टर्ब या फोकस मोड का विकल्प होता है, इस विकल्प को चालू कर दें। वहां आप अपनी इच्छा से फोन या सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन खोल या बंद कर सकते हैं। इससे इंटरनेट चालू रहेगा और आप पढ़ाई बिना बाधा के कर पाएंगे।
1: जी मित्रों, आप अलग से भी सोशल मीडिया के एप्स को उनकी सेटिंग में जाकर म्यूट कर सकते हैं।
0: जी,
1: आप एक काम और कर सकते हैं कि सारे एप्स के आइकन मुख्य स्क्रीन से हटाकर दूसरी स्क्रीन पर डाल दें, ताकि यदि संदेश आए भी तो आपको दिखाई ना पड़े।
0: तो श्रोता मित्रों, हम कहना चाहेंगे कि मोबाइल से मनोरंजन जरूर कीजिए, लेकिन इससे अधिक मोबाइल को सीखने का साथी बनाइए। और याद रखिए,
1: मोबाइल पढ़ाई का साधन बने, समय बर्बाद करने का नहीं।
0: पढ़ते समय, परिवार के साथ समय बिताते समय नोटिफिकेशन अवश्य बंद रखें।
1: रोज मोबाइल के उपयोग का समय तय करें और रात में देर तक मोबाइल न चलाएं और इंटरनेट का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करें।
0: मत भूलिए, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं।
1: क्या बात है, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं। जिसने मोबाइल को नियंत्रित कर लिया,
0: समझिए उसने अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर लिया।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, मिलेंगे फिर एक
0: नई जानकारी के साथ।
1: श्रोताओं, आज हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपको एक काम करना है।
0: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर 1 या 2 पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको करना क्या है।
1: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर 1 या 2 पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। और भेज दीजिए अपना स्लोगन हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाइए,

0: कीजिए एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल, वहां आपको सर्च के कई विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोता, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है परीक्षा।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कहानी पर आधारित है, जिसे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। कहानी के द्वारा ईमानदारी, परिश्रम, कर्तव्य निर्वहन और कार्यनिष्ठा के मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है।
2: परीक्षा। बात उन दिनों की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन दिनों देश में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थीं। रियासतें यानी छोटे छोटे राज्य जो अंग्रेजों की अधीनता तो मानते थे लेकिन स्वतंत्र थे। ऐसी ही एक रियासत थी

0: परीक्षा। बात उन दिनों की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन दिनों देश में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थीं। रियासतें यानी छोटे छोटे राज्य जो अंग्रेजों की अधीनता तो मानते थे लेकिन स्वतंत्र थे। ऐसी ही एक रियासत थी देवगढ़। राजस्थान की देवगढ़ रियासत बहुत ही मनोरम स्थान में बसी हुई थी। रियासत की जनता बहुत प्रसन्न थी। रियासत की खुशहाली के पीछे सबसे बड़ा योगदान था वहां के दीवान यानी मुख्य प्रशासक सरदार सुजान सिंह का। वे दयालु, नीति कुशल और बहुत अच्छे प्रशासक थे, लेकिन अब वे बूढ़े हो चले थे। एक दिन की बात है।
1: महाराज की जय हो। दीवान श्रीमत सरदार सुजान सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं।
2: मिलना चाहते हैं इस समय? उन्हें आदर सहित कक्ष में ले आओ।
1: जी महाराज।
3: महाराज
2: आइए आइए दीवान साहब, बैठिए बैठिए। जी कहिए।
3: राजन, पिछले 40 वर्षों से आपके दास ने इस रियासत की सेवा की है। अब विचारा है कि इस सेवा से अवकाश ग्रहण करूं।
2: दीवान साहब।
3: महाराज,
2: हम आपका अनुरोध स्वीकार तब करेंगे जब आप हमारी एक शर्त मानेंगे।
3: आज्ञा दीजिए महाराज। कैसी शर्त?
2: शर्त यह है कि अवकाश ग्रहण करने से पहले आपको राज्य के लिए एक ऐसा दीवान ढूंढ कर देना होगा जो आपकी तरह सुयोग्य हो।
3: जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा।
0: दूसरे ही दिन देश के सभी प्रसिद्ध समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर विज्ञापन छपा कि देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। इस विज्ञापन का वही असर हुआ जो जंगल में आग का होता है। सैकड़ों लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए देश के अलग अलग प्रांतों से देवगढ़ चल पड़े। आइए अब आपका परिचय कराएं कुछ उम्मीदवारों से। आप हैं श्रीमान अ। आप सोकर उठते थे सवेरे 10 बजे, लेकिन जब से यहाँ आए हैं बेचारे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और बगीचे में टहलते हुए सूर्य देवता के दर्शन करते हैं। और आप हैं श्रीमान ब, स और ज। इनकी तो पूछिए मत। अपने घर में इन्होंने नौकरों की नाक में दम कर रखा था। ये वहाँ अशिष्टता के जीते जागते उदाहरण थे, लेकिन यहाँ तो ये बेचारे नौकरों को भी संबोधित करते समय आप श्रीमन, महामना, मान्यवर और जनाब जैसे संबोधनों और उपाधियों का उपयोग किए बिना बात ही नहीं करते। और इनसे मिलिए, आप हैं श्रीमान क। आप फैशन के मारे हैं, लेकिन यहाँ सादगी की प्रतिमूर्ति बने घूम रहे हैं। अक्सर राजमहल के पुस्तकालय में आप बड़े बड़े ग्रंथों को उलटते पलटते देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर पाखंडोत्सव चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी अयोग्य हैं। उन्हें क्या पता था कि कुशल और अनुभवी दीवान सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही हैं और अनुभवी कान सब कुछ सुन रहे हैं। समय समय पर उम्मीदवारों को समूह वाद विवाद के लिए भी बुलाया जाता था। एक दिन की बात है, सभी उम्मीदवारों को लगा कि विद्वता तो दिखा ही रहे हैं, क्यों ना शारीरिक क्षमता भी दिखाई जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि आज हॉकी खेली जाएगी।
4: चल चल चल चल जल्दी कर, जल्दी कर।
5: रुक रुक, गेंद रुक, गेंद रुक,
4: ये मैंने दिया पास। अरे दौड़ो दौड़ो और तेज दौड़ो।
6: वो तो गेंद लिए खुद ही दौड़ा चला जा रहा, इसे पास देना चाहिए।
7: लगता है खुद ही गोल करके मानेगा। अभी छीनता हूँ गेंद उससे।

0: सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें कहीं दूर से इस मैच को भी देख रही थीं। खेल खत्म हुआ, सभी खिलाड़ी थके हुए थे, शाम होने वाली थी। अब सबने फैसला किया कि राजमहल लौटा जाए। मैदान से थोड़ी ही दूरी पर एक नाला था जिस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना होता था। खिलाड़ी लोग उसी नाले के पास बैठे सुस्ता रहे थे।
1: आज खेल में बड़ा मजा,
2: बहुत मजा आ गया।
3: कमाल का गोल मारा था भाई, मजा आ गया उसमें तो।
4: हाँ, पर गोल हो गया।
3: दिल खुश हो गया।
0: तभी एक किसान अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। नाले में कीचड़ था और चढ़ाई ऊंची थी। उसकी गाड़ी वहीं फंस गई।
5: अरे कहाँ फंस गई?
6: ए, इधर क्या देख रहे हो?
7: साहब, गाड़ी फंस गई है। अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो।
5: अच्छा, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो बड़े आए।
8: चलो साथियों, देर हो रही है। दीवान साहब समय का भी बहुत ध्यान रखते हैं।
9: चलो चलो चलो, चलो,
7: अरे,
9: चलो
7: भाई निकलो। लेकिन
5: अरे छोड़ो इन्हें, चलो।
0: लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जो वहीं रुक गया। आज हॉकी के खेल में उसे चोट भी लग गई थी और वह लंगड़ा रहा था। वह दृढ़ निश्चय के साथ किसान की ओर बढ़ा और बोला,
10: बाबा तुम गाड़ी में बैठकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ। बस थोड़ी देर में गाड़ी बाहर निकल जाएगी।
7: हाँ ठीक है,
10: कोशिश करते हैं।
7: हाँ,
5: निकल गया।
0: और हुआ भी यही। युवक ने पूरा जोर लगाया, किसान ने बैलों को साधा और थोड़ी ही देर में गाड़ी नाले के पार थी।
7: हाँ बेटा, अच्छा किया तुमने।
10: जी बाबा।
7: हुजूर, मुझे रात भर यहीं रुकना पड़ता।
10: तो क्या इनाम देते हो?
7: नारायण ने चाहा तो दीवानी आपको ही मिलेगी।
0: और आखिर वो दिन आ ही गया। सबके दिल जोर से धड़क रहे थे। पता नहीं किसके भाग्य में राजयोग है। राज दरबार सजाया गया।
11: पूरा एक महीना हो गया है। आज फैसला हो।
12: तुम्हें क्या लगता है? महाराज आ रहे हैं।
11: अरे अरे,
12: सुजान सिंह जी भी आ गए।
0: महाराज सिंहासन पर आसीन हुए। रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा,
7: मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा सुयोग्य पुरुष मिल गया है। मैं पंडित जानकी नाथ साह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ।
13: बधाई हो, बधाई हो पंडित जी। बहुत बहुत बहुत।
7: जब आप हॉकी खेल रहे थे, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो व्यक्ति जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसमें धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता सभी गुण हैं। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा।
11: सही बात है।
7: उसका संकल्प दृढ़ है। वो स्वयं चाहे धोखा खा जाए।
11: बिल्कुल सही कहा।
7: लेकिन फिर भी अपने

0: एक जंगल था। उस जंगल में एक ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा बहुत दयालु था। वो सभी पक्षियों की सहायता करता था। जब दूसरे पक्षी दाना चुगने बाहर जाते थे तो कौवा उनके बच्चों की देखभाल करता था। वो पक्षियों के बच्चों को गीत सुनाता था।
1: मैं हूँ काला कौवा, मैं हूँ काला कौवा, दूर दूर तक उड़कर जाता, सारी खबरें लेकर आता, काव काव कर गाना गाता, सबके मन को खुश कर जाता। मैं हूँ काला कौवा, मैं हूँ काला कौवा।
0: एक दिन कौवे को भूख लगी। वो खाने की खोज में निकला। उसने उड़ते हुए देखा कि एक शिकारी आ रहा है। शिकारी के कंधे पर जाल रखा हुआ था। वो जंगल की ओर ही आ रहा था। कौवे ने शिकारी को देखकर सोचा,
1: ये शिकारी अवश्य कुछ पक्षियों को पकड़कर ले जाएगा। शिकारी से पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए।
0: उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, किंतु फिर भी पक्षियों को बचाने के लिए वो वापस लौट आया। जंगल में पहुंचते ही कौवे ने काव काव कर सब पक्षियों को इकट्ठा किया और बोला,
1: सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो।
0: सब पक्षियों ने कौवे की बात मान ली। अब कौवा बहुत थक गया था। उसे भूख भी लग रही थी। वो खाने की खोज में जाने लगा। तभी उसने कुछ कबूतरों को देखा। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
1: भाइयों, आप कहां से आए हैं? मैंने आपको पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा।
2: मैं कबूतरों का मुखिया हूं। हम सब पास के जंगल से आए हैं और दाना चुगने जा रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा, लेकिन सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो, सुनो भाइयों, सुनो।
2: कौवे भाई,

0: आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसने देखा था कि मिलजुल कर काम करने में कितनी शक्ति है।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम मित्र की सहायता, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार। उमंग।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Gaurav Dhawan Lal with my co-anchor Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka swagat hai. Desh videsh ki aarthik gatividhiyon aur share bazaar ki halchal par charcha ke liye aaj shrotao hamare saath aamantrit hai hamare samaksh varishth aarthik patrakar Siddharth Singh. Siddharth, karyakram mein aapka abhinandan.
2: Prachi, aap ke saath saath Gaurav, aapko bhi good evening.
1: Sabse pehle ek nazar aaj ki aarthik surkhiyon par.
0: Thank you, Prachi. Siddharth, once again, good evening. Welcome. Listeners, a quick look at the headlines. Benchmark domestic indices end on positive note. Sensex rises over 150 points. Nifty settles above 24,600. RBI leaves repo rate unchanged. Raises current fiscal year growth forecast to 6.7%. Trims inflation projection to 5%. And global crude oil prices rise.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में बढ़त सेंसेक्स 150 अंकों से ऊपर बढ़ा निफ्टी 24,600 से ऊपर बंद हुआ भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है चालू वित्त वर्ष में विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% किया वहीं महंगाई दर का अनुमान 5% घटाया है दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी
0: Listeners, before we move further into the program, we'd like to share that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ वहीं निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप इंडेक्स 0.2% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.8% बढ़ा बाजार ने बढ़त के साथ शुरुआत की लेकिन जैसे जैसे कारोबार आगे बढ़ा दोनों प्रमुख शेयर सूचकांक कमजोर होते नजर आए हालांकि कारोबार के अंत में क्लोजिंग ऑक्शन सत्र के बाद दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कुछ हद तक रिकवरी भी की
0: Benchmark domestic equity indices ended on a positive note today. The Sensex gained 152 points to close at 78,581. The Nifty rose marginally by 10 points to settle at 24,625. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index rose 0.2% and the small-cap 100 index added 0.8%. Earlier, the markets opened in the positive zone, but as the session progressed, both benchmark indices slipped into negative territory. However, towards the end of the session, the Sensex and the Nifty paired their losses after the closing auction session.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 18 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई सबसे ज्यादा बढ़त वाली कंपनियों के शेयरों में अल्ट्राटेक सीमेंट 2% एनटीपीसी 1.8% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.7% बढ़े वहीं घाटा दर्ज करने वाली कंपनियों के शेयरों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 1.2% एचसीएल टेक 1% से अधिक और रिलायंस में

0: लगभग 1% की गिरावट आई.
1: In sectoral indices on the BSE, 21 out of 28 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, housing finance advanced 1.8%, metal rose 1.6% and auto gained 1.4%. In contrast, mid-small private banks quality tilt. Energy and oil and gas fell by 0.4%, mid-small private banks fell 0.3% and capital goods dropped by 0.2%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,292 companies advanced, 1,958 declined and 198 remained unchanged.
0: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.13 रुपए पर बंद हुआ. सिद्धार्थ, अगर हम पिछले यूएस स्टॉक मार्केट के सेशन की बात करें तो वहां पर एक रैली रही, तो क्या ये उसी का प्रतिरूप हमें आज बाजार में देखने को मिला कि बाजार जो है पॉजिटिव नोट पर बंद हुए?
2: नहीं, उसके अलावा प्राची, जो मुझे लगता है न केवल जो यूएस मार्केट का रिफ्लेक्शन जो आप बोल रही हैं वहाँ पे जो तेज़ी है पिछले 3-4 दिनों में, खासकर आईटी स्टॉक्स में तेज़ी है जो अमेरिकी बाज़ारों में, मुझे लगता है कि आज जो मुझे लगता है जैसा जैसे जब बाज़ार खुले तो काफ़ी फ्लैट थे, उसके बाद गिरे भी लेकिन उसके बाद रिकवरी आई. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2-3 जो महत्वपूर्ण कारण, मुझे लगता है खासकर एक जो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध है उसकी जो अनसर्टिनिटी है वो कहीं ना कहीं अभी भी बाज़ार में बनी हुई है. और उसके अलावा मुझे लगता है आज प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला मुझे लगता है. तो कहीं ना कहीं ये 2 कारण और मुझे लगते हैं जो बाज़ार पर कहीं ना कहीं हावी रहे.
0: रेपो रेट का मतलब
2: जो रेपो रेट जो आया आरबीआई का जो अनाउंसमेंट है रिजर्व बैंक का, सेंट्रल बैंक का, वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड लाइंस पे था. वो एक्सपेक्टेड था कि कोई बहुत ज़्यादा, मतलब इस समय कोई वो बदलाव
0: नहीं था, बिल्कुल नहीं.
2: वो जो न्यूट्रल स्टांस है, और वो आप देखेंगे चाहे अमेरिका का जो फेड है, फेड रिजर्व, उन्होंने भी अभी तक अपने इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया, चाहे यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो. तो मुझे लगता है वो उसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं था. बाजार ने उसको मुझे लगता है कहीं ना कहीं फैक्टर इन कर रखा था, और वो अच्छा भी है, शुभ संकेत है हमारी बाजारों के लिए.
1: सो दैट लुकिंग एट द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इन टर्म्स ऑफ मार्केट्स बिल्डिंग इन सर्टेन प्री एग्जिस्टिंग जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, कीपिंग ऑल दैट इन माइंड एंड ऑल्सो कीपिंग आई थिंक द फैक्ट दैट द इंडियन इकोनॉमी इज सॉलिड रोबस्ट, आई थिंक कंजम्पशन इज स्टिल देयर, द मॉनसून हैज पिक्ड अप which was predicted not to be so good, but I think by and large it's averaging out with little pockets of disturbance. Do you think that somewhere in August and September there was a sentiment that maybe the markets won't be really rallying or really picking up? Do you think the range in which they're going to move is going to go up a step now?
2: Gaurav, it will all depend the direction of the market for as you asked, would they move out of the current range. That I think to a large extent would depend on how US President Donald Trump, his next stance, because obviously now first current uncertainty, that is the US-Iran war that is going on, and one thing which has become certain is uncertainty. Every day we hear both the sides, or at least the American president saying or announcing that they're expecting to reach a peace deal with Iran, but from the other side then there is some contradiction. Again yesterday their hopes have been raised, he's issued a statement sometime earlier in the day. Also we saw the statement that the Strait of Hormuz is likely to get normal and operations are likely to get normalized. So I think one would be how the US-Iran conflict pans out in the coming days, and how the peace, whatever peace deal is reached, how it is actually implemented, or whether it is something which is stable, which stabilizes or is implemented actually on the ground. So I think that would be one factor. Plus, yes, as far as our own GDP numbers would come now, we had very good GDP numbers. Q4 was very good. And also, if you look at the monetary policy announcements by the RBI governor, I think he's also upped the growth prospect, has gone up. As the concern, which is that inflation was a concern, obviously, because of the West Asia, because we are huge importers of energy, and that obviously feeds into our prices. So, right. So that also apprehension he has kind of allayed, and they've also lowered the projection for inflation, though very small, marginally, right. By a small percentage. But even then, he's

0: देखें या अर्बन डिमांड देखें, इंडस्ट्रियल साइट, सर्विस सेक्टर, तो कहीं ना कहीं, और जो लेटेस्ट नंबर्स आ रहे हैं, चाहे जीएसटी के नंबर्स आए हों
1: जी
0: या जो कार सेल्स के नंबर आए हों, तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल दिखती है कि जो हिंदुस्तान मैक्रो इकोनॉमी फंडामेंटल्स हैं इंडिया के, वो इंटैक्ट हैं एंड देर इज़ नथिंग टू वरी।
1: बिल्कुल सिद्धार्थ, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी हमारे जो डोमेस्टिक इंडिकेटर्स हैं वो पहली तिमाही में काफ़ी रेजिलिएंट नज़र आए। बहरहाल, इस संदर्भ में आइए सुनते हैं आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने क्या कहा।
2: Renewed tensions in West Asia, which are disruptive of global supply chains, volatility in international financial markets, and weather-related shocks pose downside risks to growth. However, domestic economic activity has exhibited resilience, as reflected by the high-frequency indicators available for Q1. Early results of corporates for Q1 indicate healthy performance in the manufacturing sector. This is also corroborated by an expansionary PMI. Services activity too maintained its momentum in the wake of strong domestic demand. Overall, the Indian economy performed better than expected in Q1.
1: आगे बढ़ते हैं और इसी से जुड़ी एक और खबर। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ टेस्ट कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इनके सुरक्षा फीचर्स और अन्य विवरण जल्द साझा किए जाएंगे। प्लास्टिक के नोट जब चलन में आ जाएंगे, जिसकी परिकल्पना हम अभी कर रहे हैं, और किस तरीके से उभरेंगे ये तो वक्त बताएगा सिद्धार्थ, मगर आप इसे कैसा देखते हैं ये हम जानना चाहेंगे।
0: नहीं प्राची, मुझे लगता है कि दुनिया के 30 देश कम से कम ऑलरेडी प्लास्टिक नोट्स जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, और आरबीआई रिजर्व बैंक भी इसको एक पायलट के तहत अभी शुरू कर रहा है। पायलट प्रोजेक्ट होगा, हालांकि जो एक्चुअल हमको देखने को मिलेंगे नोट्स वो अगले साल अप्रैल में, जो उन्होंने बोला है अगले वित्त वर्ष के शुरू में। और मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, कम से कम ऐसा बोला जाता है कि जो अपने कागज़ के नोट हैं उनसे कहीं ना कहीं कम से कम 2 से 4 गुना ज़्यादा उनका लाइफ स्पैन होता है। आप उसमें जो फीचर्स हैं, सिक्योरिटी फीचर्स और अच्छे डाल सकते हैं, और अगर लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा अगर कॉस्ट इनिशियली ज़्यादा भी होगी तो जो उनकी लाइफ स्पैन है अगर वो ज़्यादा है तो वो उसको कवर कर लेगी। तो कहीं ना कहीं एक तो दो कारण तो ये हो गए। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली कि जो छोटे नोट्स हैं, जो छोटे डिनोमिनेशन के नोट्स हैं
1: जी,
0: उनका जो उसका शुरुआत हम वहाँ से कर रहे हैं, और वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे 10 या 20 रुपए के नोट्स की जो बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा जो आप इस्तेमाल में आते हैं वो 10 रुपए या 20 रुपए के नोट्स का चलन ज़्यादा होता है।
1: चेंज होते हैं।
0: हाँ, जो 500 का नोट है वो आप रोज़ रोज़ हर चीज़ में अपने लेन देन में उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पे जो है छोटे नोट्स, इसीलिए फोकस इज़ ऑन स्मॉल नोट्स, स्मॉल डिनोमिनेशन नोट्स, और ये आने वाला मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने बोला कि पायलट के तौर पे शुरुआत करें, अगर रिजल्ट्स अच्छे होंगे तो इसको और जो है बड़े पैमाने में इसको आगे बढ़ाएंगे।
1: बिल्कुल।
3: मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज आइटम, द ऑफर फॉर सेल इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व्हिच क्लोज्ड टुडे अट्रैक्टेड बिड्स फॉर अबाउट 70% ऑफ द शेयर्स set aside for retail investors. According to BSE, the category placed bids for about 57.6 million shares compared to 82.2 million shares reserved for retail investors. Yesterday, offer for sale in the LIC received an overwhelming response from institutional investors and was oversubscribed. In view of the exceptional demand, the government had decided to exercise the green shoe option. Moving on to our next story, India's services sector remained in expansion territory in July, supported by healthy export demand and continued hiring. According to the HSBC India Services Purchasing Managers Index PMI, data compiled by S&P Global, the seasonally adjusted services PMI, business activity index stood at 53.3 in July. It remained above the 50 mark that separates growth from contraction. However, the country's service economy growth slowed in July as business activity rose at the weakest pace in over 4 years. This was largely due to softer demand, competitive pressures and order postponements. Meanwhile, service providers continued to report growth in activity with strong overseas demand emerging as a key support factor. The report showed that the rate of job creation showed an uptick from that in June, with service providers continuing to expand their workforce. Further, input cost inflation softened to a 6-month low and remained below the long-running average.

0: and 45 cents per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.8% higher at $76.37 per barrel when reports last came in. Right. I think you already have made your comment on crude oil prices, so we shall move to gold and silver, the glittering metals. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 2.2% up at 1,47,490 rupees per 10 grams, while silver was trading 3% higher at 2,28,800 rupees per kilogram. A short while ago.
1: Multi-commodity exchange में अगस्त अनुबंध वाला सोना 1.8% बढ़कर 1,45,140 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और सितंबर अनुबंध वाली चांदी 2.7% की बढ़त के साथ 2,27,520 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। सिद्धार्थ, समय की परिधि में रहते हुए मैं टिप्पणी आपसे चाहूंगी सोने के दाम पर खास करके, और एक सोने चांदी अगर आप दोनों के दाम पर बताएं तो बेहतर है।
2: नहीं देखिए, सोना अभी तक जो बॉटम हमने देखा इस पिछले 2-3 महीने में, हमने देखा तकरीबन $4,000 पर आउंस पे कहीं ना कहीं वो मतलब वहाँ बाइंग आ रही है। हाँ, वहाँ बाइंग आ रही है, लेकिन अभी आप जब आज की बात करें तो एक बार फिर कीमतें बढ़ी हैं, तकरीबन मुझे लगता है $4,100 के ऊपर पर आउंस है। और उसके दो प्रमुख कारण जो मुझे लगता है, एक तो जो क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे आई हैं, साथ ही साथ जो US के ट्रेजरी यील्ड्स हैं या बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी थोड़ा घटा है हल्का सा, तो वो दोनों कारण है। क्योंकि गोल्ड को ये माना जाता है कि इसमें कोई आपको रोज़ कोई इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो लेकिन साथ साथ इसके साथ साथ ये भी कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी अभी भी बड़े पैमाने पे गोल्ड जमा कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिमांड बनी रहेगी।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, मेरे और गौरा के हम दोनों के ही तमाम सवालों के जवाब।
2: आप दोनों को भी धन्यवाद।
0: थैंक यू सिद्धार्थ। Before we close the headlines, benchmark domestic indices end on positive note. Sensex rises over 150 points. Nifty settles above 24,600. RBI leaves repo rate unchanged, raises current fiscal year growth forecast to 6.7%, trims inflation projection to 5%, and global crude oil prices rise. That's all for today. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहाँ खुश है।
0: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होने का करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी कर प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा को सभी के लिए बेहतर और सुलभ बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि सरकार की प्रमुख योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी विचार विमर्श किया गया। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कल रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई। इससे ओपीडी सेवाएं प्रभावित रहीं। डॉक्टर राज्य सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें होम्योपैथी डॉक्टरों को एक विशेष प्रशिक्षण के बाद एलोपैथी दवाएं लिखने की अनुमति देने का प्रावधान है। सेंट्रल महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के अध्यक्ष डॉक्टर अथर्व शिंदे ने कहा कि सरकार से बातचीत नहीं होने पर 24 घंटे बाद आपातकालीन सेवाएं भी बंद की जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कल लैंडमाइन विस्फोट में सेना के दो जवान घायल हो गए। ये घटना मेंढर सेक्टर के कांगा गली इलाके में हुई जहां सेना के जवान लैंडमाइन को निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान विस्फोट हो गया। घायल जवानों को तुरंत सेना के अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज जारी है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित सात भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसिंह सिंह, रक्षिता श्रीरामराज, अश्मिता चालीहा और श्रेयांशी वली शेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठाकर और मिक्स डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी।

0: ஒழித்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது இன்று இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சி. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ரவி கபூர். संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और

0: यह विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई, विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश है।
0: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डी फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्स कॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानी हारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक कल ताशकंद में हुई। बैठक में दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, रक्षा शिक्षा, क्षमता निर्माण और रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव दिनेश कुमार और उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सुखरोव जोन सोजिक जोनोविच सिरोजोव ने की। दोनों देशों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों और सैन्य तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया। इसके अंतर्गत दोनों देशों में विशेष प्रशिक्षण और अभ्यास आयोजित किए जाएंगे जिससे सैनिक एक दूसरे के अनुभवों और बेहतर रणनीतियों को साझा कर सकेंगे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ताशकंद स्थित सैन्य सुरक्षा और रक्षा विश्वविद्यालय का दौरा भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा और रचनात्मक प्रतिभाओं की बड़ी क्षमता मौजूद है। इसका उपयोग भारत को वैश्विक स्तर पर कंटेंट निर्माण का केंद्र बनाने में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस से मुलाकात की। नेटफ्लिक्स इंडिया ने बताया कि बैठक में भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को वैश्विक मंच पर ले जाने की साझा सोच पर बातचीत हुई। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में ओडिशा का सामना पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में पंजाब ने कर्नाटक को 5-2 से, ओडिशा ने हरियाणा को 5-1 से हराया। वहीं झारखंड ने उत्तर प्रदेश को शूटआउट में हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Parliament has passed a Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters, and the

0: அழுத்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது இந்த நினைவில் நின்றவை நிகழ்ச்சி. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ரவி கபூர். संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है. राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था. विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी. राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई. लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया. श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया.
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो. कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आप नियोजित तरीके से पोस्टर

0: प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: सरकार ने बताया है कि वर्ष 2024-25 में किए गए सर्वेक्षण में देश के किसी भी जिले में हाथ से मैला ढोने वाला कर्मी नहीं पाया गया। राज्यसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2013 और 2018 के सर्वेक्षण में 58,098 हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों की पहचान की गई थी। उन्होंने कहा कि सभी चिन्हित लोगों को 40,000 रुपए की एक मुश्त सहायता राशि दी गई है। मंत्री ने बताया कि नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई कर्मियों को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सफाई कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा दे रही है। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन पवन हंस लिमिटेड ने नई दिल्ली में नॉर्वे की कंपनी नोएमी एरोस्पेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यह सहयोग देश में स्वदेशी क्षमता को मजबूत करने और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में नई तकनीकों को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। भारतीय रेल ने कंटेनर ट्रेन चलाने वाले ऑपरेटरों के लिए नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि अब कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर एक ही अखिल भारतीय लाइसेंस के अंतर्गत भारतीय रेल के सभी मार्गों पर कंटेनर ट्रेन चला सकेंगे। अलग अलग मार्गों के लिए अलग अनुमति और शुल्क की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है। मंत्रालय का कहना है कि नए नियमों से प्रक्रिया आसान होगी, निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रेल के जरिए माल ढुलाई बढ़ेगी। इससे सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा, ईंधन की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा और रचनात्मक प्रतिभाओं की बहुत क्षमता मौजूद है। इसका उपयोग भारत को वैश्विक स्तर पर कंटेंट निर्माण का केंद्र बनाने में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस से मुलाकात की। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में आज सेमीफाइनल में ओडिशा का सामना पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। तमिलनाडु के कोयंबटूर में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में पंजाब ने कर्नाटक को 5-2 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The Parliament has passed a Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters, and the emerging constitutional and legal interpretation issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is the need of the hour and timely reform. After completing the business, the Deputy Chairman adjourned the Upper House for the day. The Lok Sabha has passed the Bankers' Books Evidence Bill 2026. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. It aims to modernize the legal framework to meet the requirements of the present banking system. The bill also has a provision that an electronic or digital record of a banker's book will be admissible, valid and legally enforceable as evidence. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill when the House reassembled after the first adjournment at 2 p.m. August 5, 2026,

0: தொடர்ந்து செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: सरकार ने बताया है कि वर्ष 2024-25 में किए गए सर्वेक्षण में देश के किसी भी जिले में हाथ से मैला ढोने वाले कर्मी को नहीं पाया गया है। राज्यसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2013 और 2018 के सर्वेक्षण में 58,000 से अधिक ऐसे कर्मियों की पहचान की गई थी। मंत्री ने बताया कि नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई कर्मियों को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सफाई कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा दे रही है। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि

0: जो विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा और रचनात्मक प्रतिभाओं की बहुत क्षमता मौजूद है। इसका उपयोग भारत को वैश्विक स्तर पर कंटेंट निर्माण का केंद्र बनाने में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस से मुलाकात की। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिसरी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजिता हेरात और विदेश सचिव अरुणे रणराजा से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के विकास के लिए उसकी जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार सहयोग कर रहा है। नई दिल्ली में अफ्रीका दिवस के अवसर पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत को गर्व है कि वो अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश भागीदारों में से एक है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार 93 अरब डॉलर रहा। डॉ जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के प्रति भारत की नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2018 में युगांडा की संसद में बताए गए 10 सिद्धांतों से प्रेरित है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन पवन हंस लिमिटेड ने नई दिल्ली में नॉर्वे की कंपनी नोएमी एरोस्पेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यह सहयोग देश में स्वदेशी क्षमता को मजबूत करने और नागरिक उड्डयन क्षेत्रों में नई तकनीकों को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में आज सेमीफाइनल में ओडिशा का सामना पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। तमिलनाडु के कोयंबटूर में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में पंजाब ने कर्नाटक को 5-2 से, ओडिशा ने हरियाणा को 5-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters, and the emerging constitutional and legal interpretation issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is the need of the hour and a timely reform. After completing the business, the Deputy Chairman adjourned the Upper House for the day. The Lok Sabha has passed the Bankers Books Evidence Bill 2026. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. It aims to modernize the legal framework to meet the requirements of the present banking system. The bill also has a provision that an electronic or digital record of a banker's book will be admissible, valid and legally enforceable as evidence. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill when the House reassembled after the first adjournment at 2 p.m. August 5, 2026 marked 7 years since the historic abrogation of Articles 370 and 35A. On this day in 2019, a landmark decision marked the beginning of a new chapter in the journey of Jammu and Kashmir and Ladakh. Prime Minister Narendra Modi, in his message on the occasion, said constitutional changes made in 2019 ushered in development and empowerment in the two union territories. In a social media post, Mr. Modi highlighted that infrastructure has expanded, opportunities in areas such as education, healthcare and entrepreneurship, and sports have grown in both Jammu and Kashmir and Ladakh. On the 7th anniversary of the abrogation of Article 370, Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal, while talking to media, said the historic step accelerated development.

0: இனிய ராகம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை டாக்டர் என் ராஜம் அவர்களின் வயலின் இசையும் குமார் சானு அவர்களின் பாட்டும் கேட்டீர்கள். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ரவி கபூர். संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: सरकार ने बताया है कि वर्ष 2024-25 में किए गए सर्वेक्षण में देश के किसी भी जिले में हाथ से मैला ढोने वाला कर्मी नहीं पाया गया। राज्यसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2013 और 2018 के सर्वेक्षण में 58,000 से अधिक ऐसे कर्मियों की पहचान की गई थी। मंत्री ने बताया कि नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई कर्मियों को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सफाई कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा दे रही है। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा और रचनात्मक प्रतिभाओं की बहुत क्षमता मौजूद है। इसका उपयोग भारत को वैश्विक स्तर पर कंटेंट निर्माण का केंद्र बनाने में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस से मुलाकात की। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है।

0: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே நவீன் சக்சேனா. संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है. राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था. विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी. राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई. लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया. श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया. सरकार ने बताया है कि वर्ष 2024-25 में किए गए सर्वेक्षण में देश के किसी भी जिले में हाथ से मैला ढोने वाला कर्मी नहीं पाया गया. राज्यसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2013 और 2018 के सर्वेक्षण में 58,000 से अधिक ऐसे कर्मियों की पहचान की गई थी. उन्होंने बताया कि नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई कर्मियों का कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं. नीति आयोग ने कल रीमैनेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत 2047 नामक रिपोर्ट जारी की. रिपोर्ट में देखभाल करने वाले कर्मियों को सशक्त बनाने और देश में एक बेहतर देखभाल व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया. इसका उद्देश्य भारत को कुशल देखभाल कर्मियों के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र बनाने में मदद करना है. नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा कि देखभाल केवल इलाज तक सीमित नहीं है बल्कि ये उससे कहीं व्यापक है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन पवनहंस लिमिटेड PHL ने नई दिल्ली में नॉर्वे स्थित नोएमी एयरोस्पेस के साथ एक गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए. समझौता ज्ञापन की अध्यक्षता नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने की. इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि यह सहयोग नागरिक उड्डयन क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और उभरती प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिए भारत की व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा और रचनात्मक प्रतिभाओं की काफी क्षमता मौजूद है. इसका उपयोग भारत को वैश्विक स्तर पर कंटेंट निर्माण का केंद्र बनने में किया जा सकता है. प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरांटोस से मुलाकात की. पुदुचेरी सरकार ने अंततः अपने मंत्रिपरिषद को विभागों का आवंटन कर दिया है. उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने आवंटन को मंजूरी दी और मुख्यमंत्री एन रंगासामी की उपराज्यपाल के साथ हुई बैठक के बाद सरकारी राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी की गई. विभागों के आवंटन में देरी को लेकर हाल के हफ्तों में विपक्षी दलों ने आलोचना की थी. ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सप्ताह समझौते की घोषणा का